0: पुण्यभूमि लक्ष्मण घाट बोलबम धाम में भगवान शिवलाई जलाभिषेक करी पुण्य लाभ प्राप्त गर्नुहोस्।
1: धाम परिसर क्षेत्र में मदिरा पदार्थ बिक्री वितरण तथा सेवन में रोक लगाइएको जानकारी गराउँदछौं। यदि कसैले यस्तो कार्य गरे वा गराएमा कानून अनुसार कारवाही गरिने बेहोरा समेत जानकारी गराइन्छ।
0: आयोजक लक्ष्मण घाट बोलबम धाम विकास समिति बाणगंगा छ कपिल वस्तु अध्यक्ष रणबहादुर काउचा मोबाइल 98664330 सह आयोजक लक्ष्मण घाट सामाजिक विकास केन्द्र र कपिल वस्तु युवा भजन समूह संरक्षक बाणगंगा नगर पालिका वडा नम्बर 6 को वडा कार्यालय।

कई प्रकार को रसायन केमिकल न मिसाइए शुद्ध र प्राकृतिक स्वास्थ्य श्री चितवन को अत्याधुनिक मिल में उत्पादित शुद्ध तोरी को तेल स्वास्थ्य श्री रिलायबल एग्रो नेपाल पब्लिक लिमिटेड का प्रीमियम उत्पादन है।

0: कि जीवन जीवन जीवन बीमा जरूरी था रिलायबल लाइफ सदैव भरी लाए।
1: शिव मंदिर सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह को साधारण सभा होने बारे सूचना। शिव मंदिर सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह बारदंगा नगरपालिका एक बुंगची कपिल वस्तु को 20वां वार्षिक साधारण सभा यही मिति 2083 श्रावण 28 गते बिहीबार बिहान को 11 बजे श्रीपेज होटल एंड रिसोर्ट बारदंगा 4 दरखास्त कपिल वस्तु में होना गई रहेकोले संपूर्ण उपभोक्ता सलाहकार तथा विभिन्न संघ संस्थाहरूलाई पत्र पठाइएको छ। कारणवश पत्र प्राप्त हुन नसकेमा यही सूचनालाई आधार मानी साधारण सभालाई भव्य र सभ्य रूपमा सफल बनाउन यहाँको उपस्थितिका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछौं। अनुरोधक शिव मंदिर सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह बारदंगा नगरपालिका एक बुंगची कपिल वस्तु अध्यक्ष झलक मल्ल ठकुरी।

प्रकार को रसायन केमिकल न मिसाइए शुद्ध र प्राकृतिक स्वास्थ्य श्री चितवन को अत्याधुनिक मिल में उत्पादित शुद्ध तोरी को तेल स्वास्थ्य श्री रिलायबल एग्रो नेपाल पब्लिक लिमिटेड का प्रीमियम उत्पादन।

0: प्रकार को रसायन केमिकल नमिसाइए शुद्ध र प्राकृतिक स्वास्थ्य श्री चितवन को अत्याधुनिक मिल में उत्पादित शुद्ध तोरी को तेल स्वास्थ्य श्री
1: रिलायबल एग्रो नेपाल पब्लिक लिमिटेड का प्रीमियम उत्पादन।

0: बुद्ध आवाज 89.6 मेगाहर्जमा सुन्न नभुल्नु होला।
1: यति बेला साँझको 7 बज्यो।

प्रकार को रसायन केमिकल न मिसाइए शुद्ध र प्राकृतिक स्वास्थ्य श्री चितवन को अत्याधुनिक मिल में उत्पादित शुद्ध तोरी को तेल स्वास्थ्य श्री रिलायबल एग्रो नेपाल पब्लिक लिमिटेड का प्रीमियम उत्पादन